कार्य सतगुर प्रसाद सरोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख तमन होई तू करता करना मैं नाही जाह करी न होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपू रहया तू सच्चा साहिब सिवत सवाले ओ जिन कीती सो पार पया।

बिचारे गावन तुद नौ जति सती संतोखी गावन तुद नौ वीर करारे गावन तुद नौ पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुद नौ मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच प्याले गावन तुद नौ रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुद नौ जोध महाबल सूरा गावन तुद नौ खाणी चारे गावन तुद नौ खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुद नौ गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले और केते तुद नौ गावन से मैं चितन आवन नानक क्या बिचारे।

हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत तेरी

जी जो सब सह का जनोई आसा महला चौथा करता सत्यारू मैडा साई जो तो पावे सोई थी सी जो तू देहे सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियावो सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेलो विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना है सोई जन जाना है हर गुण सद ही आख बखाना है जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद मिन दूजा अवर न कोई

इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कब हो आप हादय मोह बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दैं कर सब बैरन को आज संघड़िय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ है मुझे अबर आए मरण काल का त्रास न वरिया ऊ जोसदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करे हो रच्छा राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो परी चातुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मासा जमन काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब दिकर करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन

रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो बारी, सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छय करता। श्री अस्तुज जपै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सबे आपत कोई अड़िल।

लाज बिचार अपना जान मुझाए प्रत परियै चुन चुन सतर हमारे मरियै देग तेग जग मैं दो चले राख आप मोहे और नंद लै तुम वम करो सदा प्रतबारा तुम साहि मैं दास तिहारा जान अपना।

स्वर्गवास रगबर करा सगरी पुरी समेत चाउ पई जो एह कथा सुनै अरगावै दुख पाप तेह निकट ने आवै बेसन भगत की ए फल होई आद बया छिप सकन कोई सम्मत सत्र है सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दाव त्वय प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहु लहु सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर तद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रगबर कथा प्रसंग साध असाध।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, अज दे लंगरां दी सेवा अपने गुरु घर दे सेवक भाई गुरवीर सिंह जी कमेटी मैंबर जो तिन्हां वलों श्री सहज पाठ दे भोग पाए गए ते तिन्हां वलों शुकराना करदिआं चढ़दी कला लई सो इह सेवा कीती जा रही है लंगरां दी सेवा। सो दूसरी बेनती इह है कि कौम दे महान शहीद अमर शहीद भाई साहब भाई बेअंत सिंह जिन्हां ने इंदिरा गांधी दा सौदा लाया सी, सो उन्हां दी धर्म सपत्नी बीबी बिमल कौर खालसा, सो उन्हां दा 35वां सो 1991 विच मौजूदा सरकारां ने तिन्हां नूं शहीद कर दिता सी। उन्हां दा शहीदड़ा किसी ने कदे मनाया नहीं। पहली बार इस गुरु घर एक कमेटी ते सो माता की भी सेवक जथा बीबियां वालों ये बहुत उपराला किया गया। सो उन्हां दे परिवार ने कहा सी कि साड़ी माता दा पंथ दे विच बहुत योगदान है, उन्होंने कुरबानी की। उन्होंने बेटी अमृत कौर ने कहा कि तुसी गुरु घर नूं बेनती करो कि साड़ी माता दा ये शहीदी दिहाड़ा जरूर मनाया जाए। सो पहली बार आपां इस गुरु घर की कमेटी ने यह उपराला किया बहुत वधिया। बीबी बिमल कौर खालसा जी की भाई बेअंत सिंह जी की जिहड़ी कुरबानी है वह सारयां नूं पता है कि बहुत वड्डी उन्होंने कुरबानी की है। सो उन्हां दा आपां वो शेरनी महान भाई बेअंत सिंह जी तो बाद उन्होंने बहुत योगदान पाया पंथ के विच। वो बीबी ऐसू जी शेरनी सी के सो सरजीत सिंह बरनाला दा जो बेटा 1986 दरबार साहब बड़ी पुलिस चढ़ के लिया सी ते उत्थे बड़ा हंगामा होया ते चपेड़ मारी सी खिच के। ये बिमल कौर वो खालसा इहदियां बहुत वड्डियां कुरबानियां। सो उन्हां दा आपां शहीदी दिहाड़ा मना रहे हां ते खंडपुर साहब आरंभ होए हैं, कल नूं भोग पाए जाणगे 9:45 श्री खंडपुर साहब जी का भोग आरंभ होएगा। समूह संगतां ने सो वध चढ़ के आपां उन्हां महान शहीदां नूं याद करदे हां। जरूर संगतां ने आउणा। सो भुल चुक दी खेमा आ हुण भाई साहब जी भाई जर भाई वरियाम सिंह जी का जत्था गुरु की बाणी का कीर्तन सरम कराउणगे। भुल चुक दी खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

असंखनाव संखथाव गाम गाम संख लो असंख हे हे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संयोग वखाण जिन एह लिखे तिसर नाहि।

अंत न सिफती कहण अंत अंत न करण देन अंत अंत न वेखण सुन अंत अंत न जापै क्या मनमंत

आखे पड़े कर हे वख्यान आखे बर में आखे इंद्र आखे गोपी तय गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध।

सद विचारी गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़िन रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पियाले गावन रतन पाए तेरे अठसर तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गाव से मैं चितना याव नान क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पियो सी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख है कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई कर सी हुकम न करना जाई सो पातशाह हो साहा पातशाह साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पच

केसरभद्रपेश है, केसरभद्र काल है, केसरभद्र पाल है, केसरभद्र हंता, केसरभद्र गंता, केसरभद्र पेखे, केसरभद्र पेखे, केसरभद्र काज है, केसरभद्र राज है, केसरभद्र शोक है, केसरभद्र पोक है, केसरभद्र त्राण है, केसरभद्र प्राण है, केसरभद्र देश है, केसरभद्र वेश है।

विस्माद रूप विस्मा रंग विस्मा नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत

तीर्थ नावै अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सतियां मन संतोख उपजदे ने कै विचार दे दे मंगे सह सगुण।

हम दिता हम चलाया हम खटिया हम चकाया हम सचार कुड़ियार हम च पापन विचार हम च नर सुर गवतार हम च हसै हम च रोए हम च भरिया हमें तोह।

लगता पुपर तीर्थन सहजोग बेबान लख सुरतन संग्राम रन में छुटे प्राण लख सुरती लख ग्रंथ अन पढ़िया पाठ पुराण

साख सुना बह बंगाल मद माधव गावह लड़त बलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया मालका सुख अलापै संग रागनी पांचों था पै।

असंख मूर्ख अंधकोर संख चोर हराम खोर संख अमर कर जाए जोर संख गल बढ़ हत्या कमाए संख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े आर कूड़े फराए संख मलेश मल भख खाए संख निंदक सर कर पार नानक नीच कहा विचार वार न जावा एक बार जो तुद भावे साई फलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम संख ताम गम गम संख लो असंख है सर भार अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सत्संग जोग बखाण जिन्हें लिखे तिसर नाए जे फरमाए तिव तिव पाए जेता कीता तेता नाम नावै नाई कोत खाऊं।

गुरु चरणा सुभायमान गुरु सवारी सत्संग जी अज दे दीवान आपां बीबी बिमल कौर खालसा अते भाई खालड़ा साहब जिन्हां ने हनेरे विच आस दा दीवा जगाया भावें जालम सरकार ने उस दीवे नूं बुझाउण दा यतन कीता पर उस दीवे तों रोशनी लै के हजारां होर दीवे जग पे। वो जसवंत सिंह खालड़ा महान शहीद उन्हां नूं याद कर रहे हाँ ते बीबी बिमल कौर खालसा जिन्हां ने अपने पति शहीद भाई बेअंत सिंह दे शहीदी तो बाद वो शहीद जिन्हां ने पापी नूं डंड दिता उन्हां दे पाप कमाउण दी खातर ते आप शहीदियां प्राप्त कीतियां अनेकां औकड़ां दा सामना करन दे बावजूद भी उन्हां ने बड़ी बेपरवाही दे आलम विच अपनी जिंदगी बड़ी जरूरत दे नाल सरकार दे नाल टाकरा लैंदे रहे। जिथे भी जरूरत पई भावें उन्हां नूं पहला एक अबला जिही नारी दे नाल जाणिया गया पर जदों भाई बेअंत सिंह दी शहीदी तो बाद अनेकां तसीहे झलणे पए ते इहो जाणो जिवें सोना कुठाली दे विच पै के शुद्ध हो जांदा है उन्हां अनेकां तसीहां दे खातर अनेकां औकड़ां दे विचों निकल के ये कुठाली विच पै के सोने दी तरह चमकदार बीबे बिमल कौर खालसा हिम्मत वाली ते बेपरवाह दे आलम वाली एक ऐसी बेखौफ बहादुर ते जे कह लईए कि एक महान औरत दी तरह उन्होंने जिन्ना जीवन जिया भावें थोड़ा जिया पर बेपरवाही दा जिया। बेपरवाह तो जदों भाई साहब जा गल कर रहे थे बेपरवाही दा जदों शब्द आया ध्यान विच आया तो मेरे शब्द विच ध्यान आया गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया शब्द कि बेपरवाह कौन ने सदा रंग हर के जिहड़े वाहिगुरु दे रंग विच रते रहिंदे ने वह बेपरवाह हो जाते ने उन्हां नूं फिर कदे कोई खौफ कोई डर कोई भय कोई सोग किसी किस्म का कोई तसीहा उन्हां ते असर नहीं करता। आओ थोड़े समय में शब्द सरण करिए गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया बेपरवाह सदा रंग हर के जां को पाक स्वामी जिन्हां दा पख पूरदा है मेरा वाहिगुरु जिन्हां दे हिरदे विच वसदा है सतनाम वाहिगुरु ओ ऐसी बेपरवाही वाली जिंदगी बसर करते हैं।

वार होए सब मिलाएंगे, वाहे गुरु नाम जहा जहा, जो शरदा कर सेम दे, खंडा जाके हाथ मां, सो हमरी रक्षा करे, सो हमरी रक्षा करे।

गुरु सो गुरु प्यारी साध संग जी आप संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु घर वालों वेलकम जीओ आए आख्या जांदा है। जिन्हां संगतां ने अखीर तक अरदास विच शामिल हो के श्री मुखवाक सरवण कीते हन हाजरी भरी है, संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जीओ आया। सो इत्थे ही समाप्ति है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कोट बिगन लाथे प्रभ सरना प्रगटे पले संजोगा। उठ स्नान करो प्रभाते सोए हर अरादे बिखेड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज से ती कर जाती। हमें अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छा।

0: अकाल मूर्त अजुनी सह पंग गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नान श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे आसरा जे की तुम्हें श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने त्योहारी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होते गुरबिन
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छोटे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सवा पौड़िया पिया।